श्रीदक्षिणाभिमुख सन्मुख सर्ववन्द्य मायांधकार परिहार विनूत्न विन्ध्य भक्ताश्च ते चरण पद्म दिदृक्ष मोहि कोटप्पकोंड जगदीश्वर सुप्रभातम्। सर्वेश भूमि पवनाग्नि जलांतरिक्ष लिंग स्वरूप हृदयांबु